0: लाली चढ्यो कमानु तिम्रो तालामा, लाली चढ्यो कमानु तिम्रो तालामा, लाली चढ्यो कमानु तिम्रो तालामा।
1: बाँके बर्दिया दाङ ओ रोल्पा जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार जन्ने कसुर फिलक थाहा पैलसे वा कौनो राष्ट्र सेवक कर्मचारी से घुस रिस्पट माग कर्लसे निम्न ठेगानामा उजुरी करिए।
2: सम्पर्क नम्बर कार्यालय प्रमुख 98583488, सूचना अधिकारी 98585478, ओ फोन नम्बर 081550626, 550627, फैक्स नंबर 081550426।
1: 24 घंटा संपर्क कर सेकजिना मोबाइल नंबर 98585453488, साथ ही पैसा निलग्ना नंबर 107 म समेत संपर्क कर भी। ओ कार्यालय के ईमेल CIAA@gmail.com। अक्षय दुरुपयोग अनुसंधान आयोग।

नेपाल पेट्रीबार में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज वॉइस ऑफ बर्दिया वॉइस ऑफ बर्दिया।
1: रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला रात्रिको 9 बजेको छ।
2: हवस् त यतिन्जेल रेडियो टाइगर सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। आजलाई हाम्रो नियमित प्रसारण यति नै। तपाईँको मिठो निन्द्राको कामना गर्दै